आज की महफिल जनाब राज इलाहाबादी साहब की गजल से शुरू कर रहा हूं, और गजल से पहले यह कथा पेश है।

प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

एक बार बोले श्री उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले श्री

एक बार पुलिस वृंदावन बिहारे लाल की जय। सर सुनो हम लोग कर रहे को आरती के लिए, लेट अस ऑल स्टैंड एज वी ग्लोरीफाई भगवान इन द वेकिंग ऑफ द सेक्रेड लाइन।

व्यासेन घटितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुलाड विन्दयत पत्र नेत्र येना त्वया भारत तय

0: भगवान वाच दिस इवनिंग राजविद्य द सॉवरेन साइंस राजगुह्य सुप्रीम सीक्रेट चैप्टर 9 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता भगवान बिगिन्स वेरी ब्यूटीफुली बाय रिसाइटिंग
1: इदं तु ते गुह्यतमम्।